टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतुट मत नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैल्य निशा ओगे बाइला सा अनिकुद गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पस्तुना इदस नम से हत्यावत असुवत दशक बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबु सरलत्व सतुट सा जनता व समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल्दी ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल पायनियर्स अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय श्रासे मतक करना अमरणीय हांडा

सुनील सांत दस नम से पहले उपतला भाई दस नम से आसुग के साधारण विन्वगे श्रीलंका संगीति पुरोगामी अतिशय गौरवेट पात्र संगीत अन्य कुसाह गायके ओ श्रीलंका संगीत स्वदेशीय रासे नव सुरवीमसा निर्माण शीलत्व गिना आयक सिंगल संगीत स्वदेशीय हंडक नव मम्पेतक सह सत्य रसय गिना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीते महदवतत लंगावन रसक गिनेनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माण सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्व श्रीलंका संगीते इतिहासे विशाल सटाहनक कला सुनील शांत के गीत अदत असन विट श्रीलंकीय संगीते सत्य रसे निर्माणशीलत्व सा सौंदर्य तावमत जीवमानाय

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बायला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतटुमत नर्दनमय वेदिकाव सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बायला लोके अमरणीय नामक बवट पत्तुना हत्याव असुव दशके बायला संगीत नवरसा जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्लि मल्मेनिके वेनी जनप्रिय बायला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासितावकिन पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय बायला रसे मतक्रवण अमरणीय हंडाक

प्रिया सूर्यसेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार मृदु सुवदन संवेदी हंडत सरल गीत रसिया निशा ओगे गीत अदत जनप्रिय आयमी नोवी जीव मानव पवती हत्या वसुव दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलासिताव किंग प्रीतिगुण निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओहु श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाहनक तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदत सितट सोयक सिनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ